समस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

मेरी सेजड़ी ये आडंबर बने अब नासी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदों जगमगाउंदा है उदों शोभनीक हुंदा है जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदों वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

राम सुही शब्द भी सुही कीर्तन भी सेव सुही भी शब्द है लाल रावया कमल गदीरी सखी बतावो मुझे मुझे

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नू चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़के गलतियां कर रहे ते दाता जे तू बख्शना ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार ने। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्घवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंत एक तिल नहीं पासी जागो होए कृपाल सो जान प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरियान ना अवर उर्ख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपतियां काए जे ठाकर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सत सभा दीवान सत सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप अभुल नाम भुल्लो रतन नाम आपार कीम ना पवै अमलो जय कृपा हो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अगो मी जाए पूर सर्व रो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुकते प्रभ दातो दातार परियो जातक इत सरना मिले दान संतरीन जे लग फौज तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इहो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्म परगत सरलियार पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सोपा इहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही गणिया नानक नाम नरिंजन जानियो इनी भगत प्रेम लिमलाई तादे अंग
سان پیو سائر تین سبد سرت کی نیو رکھائی گرے امر داس کی اکچھ کتھا ایک جی کچھ کہی نام جائی سوٹی

वाले वाले जाओ श्याम सुंदर को अकात कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन

बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी हाव तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो।

भिक्खाई माया मोह भरम पे भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाए। एक उत्तम पन सुन्यो गुरु संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। असमला चौथा छंत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास धन गुरु रामदास।

0: तत
1: सकुन में आपको परकुन में को इधर तारा जू तोलिए निमिस गौरा हो अपराधी दूणान में जो अंता मृगाय शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाय
0: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादंग मुखचूट विभुखन सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला दिल लिलाटंग दो दोती बस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्म कर्मं सब होकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना

मेरी सेज सोही देख मोही। गुरु के सिख का हिरदा हिरदे की सेजा हिरदे का मंदिर उदो जगमगा उदो शोभनीक हुंद जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे की सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है। जदों वसदा हिरदे की सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

शब्द काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली इस दी बंदिश पैरवी ते शिवरंजनी दे मिलाप दो रागां दे मिलाप दे विच है आप प्यार ना सरवण

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हाँ, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं,

0: लगत न बार बारू भीत बनाई रसपत रहत नहीं दिन चार ऐसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार
1: अजहु समझ कछ बिगड़ियो नाहन अजहु समझ कछ बिगड़ियो नाह

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वास न देवे दुत्र माई।

0: हर हर नाम निदान है,
1: गुरमुख पाया जाए
0: तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो
0: हर हर नाम निदान है।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर बरण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

गुण आप जी ने कथन कीता है। दूजा रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर जितने अखर आए ने ना, जिन्हियां लगा मात्रा लिखिया गई ने, ए मेरे अंग ने। भाई नंद लाल जी, दूजा रूप साडा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, जेड़ा पहली पातशाही तो लैके दस पातशाहियां तक समाया है। लबा लब भरिया होया है, हरेक खजाना इस दे अंदर है। इस नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु मनना, बड़े अदब दे नाल इस नूं पढ़ना, बड़ी सुचमता ते पवित्रता रख के हाजरा हजूर जहरा जहूर जानना। जिवें साडे तो तुसी भय खांदे हो ना, इसे तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो भय खाना सिखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जाहर गुरु, जिन्हें इस दे अंग ने ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे, ओ साडे अंग समझो।

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए, समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेद भी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करदे कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान, साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मन्ने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

जिन्हें साडे वचन सुनने होण, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा शब्द पढ़े, नाल नाल विचार करे ते साडे नाल प्रतख तौर ते उह गल्लां कर रहा होएगा, असी उस नूं उसे शब्द दे विचों उस दे दिमाग दे अंदर उस शब्द दा जवाब नाल नाल दे जावांगे। जदों प्यार नाल बाणी पढ़ी दी है ना, ते अर्थ अपने आप समझ आउंदे जांदे ने, क्योंकि साहिब सच्चे पातशाह महाराज नालों नाल उस नूं समझाउंदा चला जांदा है। गरीब नूं अज कहिंदे जो मेरे